0: सरप्लस अब है स्टॉप लॉस।
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
2: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: लाइका गोल्ड।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साफो ट्रेवल at all protected.
4: You know how fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
7: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

ता लिखी है लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, साला ही साला एती सुरत न पाया, नदियां ते वहां।

गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन्हों पाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेस एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख।

सार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए धर्म

सेल का शानदार मौका, अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 से पूरी तरह फिटेड मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com।

0: काफना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस।
1: सप्टेम्बर महीना मा हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
2: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने कुवारा हो छो।
3: ए तमे स्त्रीओ अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओबोवानु बंद करो।
1: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जानमा। हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटनमा। टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आजे ज कॉल करो मंजूने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो।
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
5: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम Leica Gold पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे।

0: Greater London. This is Cardinal on Breakfast. Leica Gold, traffic and travel.
1: Good morning. Starting on Old Ford Road through Bethnal Green, we have an accident closure that continues between Approach Road and Bonner Street. Traffic is managing, but there's diversion for bus routes. Now, the A13, 15 minutes already west from Raynham to Barking and the Lodge Avenue flyover. A2 Shooters Hill Road, we've got usual slow traffic west from Blackheath Common to Deptford Bridge and North Circular westbound Staples Corner to Neasden. There's roadworks. It's down to two lanes, so very busy this morning. Now, North Circular Road is just your usual delays at Clockhouse Interchange. And then Greater Anglia, lineside fire means no service via Hackney Downs between Liverpool Street and Tottenham Hale. And that's the latest traffic and travel.
2: ये है Leica Gold 10:35 AM.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
5: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
4: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ. 29th अगस्त हेज एंड हाई स्कूल हैरो. 30th अगस्त वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन. डिनर फ्रॉम 5 PM. शो स्टार्ट्स एट 7 PM. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
6: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
7: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
9: गारंटेड.
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
9: फोन 02085748410.
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
11: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके. जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट. एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम. टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क.

0: ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्ट।

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: द लाइका रेडियो नेटवर्क, द परफेक्ट साउंडट्रैक फॉर अ ब्रिटिश समर हीट वेव.

0: What a track, Lata Mangeshkar on the vocals, and you heard it here from the film Ram Avatar. It's 7 minutes to nine.
1: Ye hai Laika Gold.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: And currencies this morning are trading at 130.54 Indian rupees, 378.92 Pakistani rupees and 448.94 Sri Lankan rupees.
3: Laika Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Laika Gold.
2: Laika Gold. Traffic and travel.
4: Good morning, the M4. Good news, that earlier accident has cleared westbound at Slough West, so traffic moving really well now. The M4 Heathrow Spur Road, we've got stop-start traffic before the tunnels into the terminals. M4 onto the elevated section, East Hayes to Brentford, 10-minute queues. And Old Ford Road, there's been an ongoing accident. It continues between Approach Road and Bonner Street with no access and slow traffic. M11 South, we've got heavy traffic just before North Circular Road. A2 Shooters Hill Road, west from Blackheath Common to Deptford Bridge. And then Public Transport Central Line, cancellation, severe delays, City of Westminster and Gatwick Express. Earlier bridge being hit by a road vehicle is causing issues. And that's the latest traffic and travel.
1: Yeah, like a gold.
3: Like a gold.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
7: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
8: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
9: हेलो रे हेलो आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा भक्ति नासुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
10: Shri Ram Mandir, King Street, South Hall. Invite you to the Shri Krishna Janmashtami Parv. Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Gyananda Ji ke Pavan Saridhya mein. 30 August, Ravivar ko 26th Shobha Yatra. Subah 11:30 baje se Shri Ram Mandir se aaram hogi. Jisme pujan, darshan, bhajan, kirtan aur priti भोजन इसके अतिरिक्त 4 सितंबर को शाम 8 बजे से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल 22 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल आप आइए और सबको लाइए
11: लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
3: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
6: Dreaming of paradise?
2: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
6: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
2: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
6: At all protected.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: Leica Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Leica Gold और online सुनो LeicaGold.com पे.
5: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: बाबुलाइजा होशियार।
1: गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में।

0: सोमवार, और वो भी श्रावण मास का सोमवार, 2026 के अगस्त महीने की 24 तारीख, और वक्त वही जब आप और हम मिला करते हैं और संगीत के सुहाने सफर पर मिल के चला करते हैं। तैयार हैं आप? माय नेम इज रवि शर्मा और बहन भाई दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तैयार हैं आप साथ निभाने के लिए, संगीत के सुहाने सफर पर जाने के लिए?
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Feel good classics all day. Leica Gold.
0: शुभारंभ मधुर आवाज से, और ये मधुर आवाज है सुमन कल्याणपुर की, और साथ में जुड़ जाए रफी साहब तो फिर यही कहेंगे कि तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अब अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से, क्योंकि तुमको हमने पुकारा है बड़े

0: लिखने वाले लिख देते हैं, विचार नहीं करते भाई। सोचा क्या, जिस गली में तेरा घर ना हो बालम। पहले तो हम सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि भाई महिलाओं की, लेडीज के तो बालम होते हैं, मर्दों के भी बालमा होते हैं, होते होंगे भाई जरूर। तभी तो कहा जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। और बालमा का भाई इतना बड़ा कारोबार है कि हर गली में उसका घर हो जिधर से भी हम गुजरे। कितने घर होंगे, जिस गली में तेरा घर होगा उसी गली से गुजरेंगे। हर गली में घर बनवाना पड़ेगा, और नहीं बनवा सके तो फिर किसी के घर पे कब्जा जमाना होगा। कब्जा तो समझते ना आप, ठीक है साहब। बोले कब्जा नहीं समझते, कब्जी समझते हैं। छोड़ो यार, सुबह सुबह शुरुआत हो गई है, सप्ताह की शुरुआत हो गई है, दिन की और भाई शुरुआत हो गई है मनोरंजन की। और भरो भाइयों, क्या किया वीकेंड पे, बिजी रहे? हाँ, हम भी व्यस्त रहे भाई। खाली कौन रहता है यहाँ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और कभी कभी तो भाई सोचने में भी व्यस्त रहते हैं। तो बहुत काम किए होंगे, बहुत प्रॉब्लम सुलझाई होंगी जो अधूरे रह गए हैं, अब म्यूज़िक सुनते सुनते भी सुलझाएंगे। राइट, सबसे पहले तो मैं एक और ख़बर आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि दुनिया भर के क्रिकेट कप्तानों ने, जिनमें भारत के कपिल देव और सुनील गावस्कर भी शामिल है, फॉर्मर कैप्टन्स, उन्होंने मिलकर के एक संदेश भेजा है पाकिस्तान को इमरान खान की सपोर्ट में कि भाई वो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जो है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए, देखिए वो गोल्ड भी जीता था, टीम को चैम्पियन बनवाया था, और देश के लिए भी कुछ किया, तो उन पर इतना वो तो करें कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के उनका परिवार चिंतित है, तो उन्हें डॉक्टरों से और उनके परिवार वालों से मिलने की सुविधाएं जो दी जाएं। तो दुनिया भर के कैप्टन, जो क्रिकेट के कैप्टन हैं, पूर्व कैप्टन, उनमें ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, भारत के भी हैं, और दूसरे देशों के भी, इंग्लैंड के भी हैं, तो उन्होंने एक पत्र लिखा है पाकिस्तानी सत्ता को कि भाई इमरान खान साहब को ये सुविधाएं प्रदान की जाएं, और ये जो है मसला उनकी सेहत से जुड़ा हुआ है उस पर गौर किया जाए। इसके अलावा भाई ब्रिटिश प्रधानमंत्री रवाना हो गए यूक्रेन, प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है, और क्या उद्देश्य है आगे चल करके चर्चा करेंगे। फिलहाल तो लेट मी टेल यू हाउ द पाउंड इज परफॉर्मिंग अगेंस्ट इंडियन रुपी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI UK आर टेलिंग दैट बाई टूडेज रेट इज़ वेरी अट्रैक्टिव यू वॉन्ट टू सेंड मनी टू इंडिया। यस, बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 130.1 रुपीज, 130 रुपये और 10 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Laika Gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: सैटको माइक्रोवेव
1: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक
2: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा
1: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th August हेज एंड हाई स्कूल हैरो 30th August वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन डिनर फ्रॉम 5 PM शो स्टार्ट्स एट 7 PM फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साफो ट्रेवल Auto protected.
4: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्ट मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा भक्ति नासुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 079-4092-4667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और बहन भाइयों, लाइका गोल्ड पर अब आप खबरों की ओर रुख करेंगे। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। भारत से आने वाली खबरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस लीडर और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान को लेकर उन पर आज एक तीखा हमला बोला है। योगी जी ने कहा कि राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर के तौर पर देश की डेमोक्रेसी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। योगी जी ने कहा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक बयान दिया है कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़कर बाहर आ जाएं। देश उनसे राहुल गांधी के रूप में बहुत अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में अपोजिशन लीडर है वो, उसके रूप में देश आपको लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह बनाता है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। आज सोमवार को विधानसभा में उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त बस ट्रैवल योजना के विस्तार का ऐलान किया। अब पात्र महिलाएं शहरी इलाकों में चलने वाली एक्सप्रेस और डीलक्स सरकारी बसों में फ्री यात्रा के मुफ्त सफर कर सकेंगी। इंटरनेशनल खबरों में अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक हमले की धमकी पर ईरान की ओर से एक बयान आया है। अमेरिका ने ईरान पर सबसे बड़ा आर्थिक हमला करने की वार्निंग दी, जिस पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने रिएक्ट किया है। आईआरजीसी ने, आईआरजीसी की स्पोक्स पर्सन वहां के उनके प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहबीबी ने कहा है कि इस तरह की धमकी देना एक तरह से अमेरिका की नाकामी है। दरअसल अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेंसन ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला करने वाला है, माली अटैक। भारत से आने वाली अन्य खबरों में महाराष्ट्र के अमरावती में आज सुबह जिला महिला अस्पताल की NICU यानी चाइल्ड यूनिट में आग लगने से 3 नवजात शिशुओं की, नए जन्मे बच्चों की मौत हो गई है। अमरावती के जिला सर्जन डॉक्टर विनोद पवार ने बताया कि आग लगने की सूचना सुबह करीब 3:30 बजे मिली। दमकल कर्मियों ने 6 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन 3 बच्चों को निकालने में वो नाकाम रहे। और एक खबर गिनी से, गिनी की राजधानी कोनाक्री में भारी बारिश के बाद कचरे का एक पहाड़ ढहकर आसपास के घरों पर जा गिरा। इस हादसे में कम से कम भी 30 लोगों की मौत हो गई है और 22 अन्य जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसा शहर के दार इस्लाम इलाके में स्थानीय समय अनुसार रात करीब 2 बजे हुआ। गिनी सरकार के मुताबिक भारी बारिश के बाद कचरे का ढेर अचानक ढह गया, अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। न्यूयॉर्क से, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से खबर आई है। वहाँ ब्रुकलिन में गोलीबारी की एक घटना में एक इंडियन सिटीजन की मौत हो गई है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय कॉन्सुलेट ने इसकी पुष्टि की है। दूतावास ने लिखा है कि हमें भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह के असमय निधन की खबर से बहुत दुख हुआ है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में उनकी जान चली गई। भारतीय कॉन्सुलेट ने आगे लिखा कि इस मुश्किल समय में हमारी संवेदनाएं और दिल से सहानुभूति उनके परिवार के साथ है। दूतावास परिवार के संपर्क में है और उनकी हर संभव मदद कर रहा है। अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेंसन ने कहा है कि वो अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला, फाइनेंशियल अटैक करने वाला है। यह खबर हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन एक यह खबर क्रिकेट से जुड़ी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को क्रिकेट के जाने माने पूर्व कप्तानों ने एक चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान के फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान की हेल्थ को लेकर के क्रिकेट जगत के 21 फॉर्मर कैप्टन ने पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इनमें कपिल देव और सुनील गावस्कर भी शामिल हैं, जिन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अस्पताल ले जाकर मेडिकल बोर्ड से उनकी जांच कराने का निर्देश दिया था। इस बोर्ड में इमरान खान के प्राइवेट डॉक्टरों के साथ उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान को भी शामिल किया जाना था। अदालत ने उनके परिवार से साप्ताहिक मुलाकातें भी बहाल की थी। पूर्व कप्तान ने दावा किया कि इमरान खान को अस्पताल में केवल कुछ घंटे रखा गया और उनकी जांच अदालत के निर्देश अनुसार नहीं हुई, बल्कि सरकार ने अपनी ओर से एक नियुक्त टीम जो है कर दी और टीम ने उन्हें मेडिकली फिट घोषित करके वापस अडियाला जेल भेज दिया। हम उस देश के कानूनों में दखलअंदाजी नहीं करना चाहते, लेकिन इतनी दरख्वास्त करते हैं, हमें अपने बयान का जवाब ही नहीं चाहिए। बस वो एक फॉर्मर वजीर आज़म है और वो एक बड़े कामयाब क्रिकेटर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी उचित देखभाल की जाए, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। चिट्ठी लिखने वालों में माइकल अथर्टन, एलेक्स ब्लैकवेल, एलन बॉर्डर, माइकल बियरली, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, सुनील गावस्कर, ली जर्मन और एडम गिलक्रिस्ट, डेविड गॉवर, किम ह्यूजेस, नासिर हुसैन, क्लाइव लाइड, कपिल देव, यानी बड़े बड़े कैप्टन जो हैं, बड़ी बड़ी टीमों के कामयाब कैप्टन जो हैं, मशहूर खिलाड़ी, वो शामिल हैं। अब बात क्रिकेट की चली है तो आपको बता दें कि भाई भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। भारत ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया था और इस समय उनका स्कोर जो है, स्कोर कैसा, बारिश के कारण मैच रुका हुआ है, लेकिन फिर भी बता दें भारत ने 8 विकेट गंवाकर 475 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया है। श्रीलंका ने अभी बैटिंग करनी है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Let me tell you the rate. भाई LemFi वाले जो रेट दे रहे हैं, एक पाउंड के बदले इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 130.49 रुपीस, पाकिस्तानी रुपए वो दे रहे हैं 378.73, श्रीलंकन रुपए 448.65, बांग्लादेशी टकाज 166.98, अफगान अफगानी 89.16 और केनियन शिलिंग्स 176.39.
0: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Well, the gold is sold at the rate of 108.55 pounds per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. The Ravi Sharma Show on Leica Gold.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन. अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
8: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02023736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स Your travel mantra.
9: Shri Ram Mandir, King Street, South Hall invite you to the Shri Krishna Janmashtami Parv. Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Gyananand Ji ke Pavan Saridhya mein 30 August Ravivar ko 26vi Shobha Yatra subah 11:30 baje se Shri Ram Mandir se aarambh hogi, jisme pujan, darshan, bhajan, kirtan aur priti bhojan. Iske atirikt 4 September ko sham 8 baje se bhavya celebration at the Shri Ram Temple, 22 King Street, South Hall. Aap aaiye aur sabko laiye.
10: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन,
11: साउथ हॉल, देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
12: बीकानेर वाला परंपरा भी,
13: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB, कॉल 07795181001।
14: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 or visit meraboiler.com.
15: Agencies apply. Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
16: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
17: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क है और लाइका गोल्ड के कार्यक्रमों में और लाइका रेडियो मिडलैंड्स के कार्यक्रमों में चिंतन का पड़ाव आ गया है। थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के विचार में हम आलेख शामिल कर रहे हैं ग्रीन फोर्ड से, श्रीमती सोनिया शर्मा जी का भेजा हुआ। तो प्रस्तुत है आज का चिंतन।

0: कहानी है आचार्य रामानुज के जीवन की। ज्यादातर भाई हमारे चिंतन में सच्ची घटनाएं होती हैं, पर कुछ एक ऐतिहासिक या महापुरुषों के जीवन से जुड़ी, या फिर भाई कभी कभी जो है पौराणिक कथाओं से भी हम चुन लेते हैं। सोनिया जी ने जो लिख करके भेजा है वो कहती है कि आचार्य रामानुज के पास एक आदमी आया और उसने कहा, महाराज मुझे अपना शिष्य बना ले, अपना शागिर्द बना ले, अपना अनुयायी बना लीजिए, मैं साधना करके भगवान को पाना चाहता हूं। आचार्य रामानुज ने उससे कहा, परमात्मा की बात तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले ये बताओ क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं नहीं महाराज, मैं प्रेम प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं मोह माया से बिल्कुल विरक्त होकर के आपके पास आया हूं। सोच लो किसी से तो किया होगा। नहीं महाराज जी, बताया ना, मैं प्रेम के झंझट में कभी नहीं पड़ा, मेरा तो जिंदगी में एक ही लक्ष्य है, मोह माया को त्याग कर परमात्मा को पाना। आचार्य रामानुज ने फिर उससे कहा, देख भाई सोच ले, याद कर ले, फिर बता, कभी किसी मित्र से, अरे परिवार में किसी से, माँ से, भाई से, पत्नी से, बहन से, किसी से भी प्रेम का बर्ताव, प्रेम किया कि नहीं किया? वो आदमी बड़े गर्व के साथ, घमंड के साथ जवाब देता है, मैं फिर बताऊं आपको महाराज जी, मैं कभी इस सांसारिक माया जाल में फंसा ही नहीं, प्रेम से मेरा कभी कोई दूर का भी वास्ता नहीं रहा। इस पर रामानुज बोले, फिर तो भाई मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। क्यों महाराज? क्योंकि तुमने, तुम में वो योग्यता नहीं है, तुम शिष्य बनने के काबिल ही नहीं हो। तुम कहते हो तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं और तुम भगवान को पाना चाहते हो। जानते हो हमारे ग्रंथ, हमारे महापुरुष कह गए हैं, बता गए हैं, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। अगर आपको प्यार करना नहीं आता, अगर आप परमात्मा के बनाए किसी इंसान से प्रेम नहीं कर सकते, उसकी प्रकृति से प्रेम नहीं कर सकते, जीव जंतुओं से, और भाई उसकी रचनाओं से प्रेम नहीं कर सकते, तो फिर आप भगवान को कैसे पाओगे? प्रेम परमात्मा की प्राप्ति का सरल और सहज रास्ता है। इसलिए भाई पहले प्रेम करो, उसके बाद ईश्वर के प्रति जो आप इच्छा रखते हो ना, वो इच्छा प्रेम बनकर ही आपको प्रभु से मिलाएगी। प्रेम के अभाव में लोग नफरत करेंगे ना, झगड़े करेंगे ना, लड़ाई करेंगे। भाई जहां प्रेम नहीं है वहां और क्या हो सकता है? और फिर उसका नतीजा भी आप जानते हैं।
1: चिंतन चिंतन,
0: भगवान को पाना है तो प्रेम करो, संतों के संपर्क में जाना है तो प्रेम करो, क्योंकि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो।

प्यार कर ले। भाई ईश्वर को प्राप्त करने का सरल और सहज रास्ता प्यार कर ले। प्रभु से तो प्यार कर ही कर, प्रभु की रचनाओं से, उसके प्राणियों से, जीवात्माओं से, प्रकृति से, इस सृष्टि से

0: आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें श्रीमती सोनिया शर्मा ने ग्रीन फूड से भिजवाया। थैंक यू वेरी मच सोनिया जी। जो गीत हमने चिंतन के साथ सुनवाया, दैट वाज प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। स्वर्गीय मुकेश जी के स्वर में ये गीत लिया था हमने, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से। और बहनों भाइयों, चिंतन को समेटने से पहले याद दिला दूं आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज भाई कुछ लोगों के जन्मदिन है, उन्हें याद करेंगे, कुछ की पुण्यतिथि भी है। एक बड़े गर्व से मैं बताना चाहता हूँ, एक नाम लेना चाहता हूँ, स्वतंत्रता सेनानियों में बड़ी कम उम्र के नौजवान, क्या लोग थे वो दीवाने। अब सैटरडे को 22 तारीख को भारत वंशियों ने बड़ी धूमधाम के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, याद किया शहीदों को, श्रद्धांजलि दी उन लोगों को जिनकी बदौलत हम आज़ादी की फिजा में सांस ले रहे हैं। और भाई ये एक ऐसा उत्सव था जिसमें भारत के लगभग सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ता था। स्टॉल लगे थे, पंजाब के छोले भटूरे, हरियाणा की जलेबियाँ, हिमाचल की नाटी, और भाई वहाँ के वो खान पान और नृत्य संगीत, हर राज्य का, कथक से लेकर ओडिसी, भरतनाट्यम, ये मस्ती और ये सेलिब्रेशन भाई जिनकी बदौलत उन शहीदों को याद किया गया। और भारतीय उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर ने ध्वज फहराया, तिरंगा लहराया, सबने मिलकर के जनगणमन गाया और वंदे मातरम का भी गान हुआ। शानदार प्रोग्राम, सुबह से शाम लगभग 4 बजे तक खान पान, नृत्य संगीत, मेलना जुलना, भाई एक बहुत बड़ा मेला था, कई हजार तो कारें पार्कती वहाँ दिखाई दे रही थी। मैं तो स्टेज पर होने के कारण भीड़ में नहीं जा सका, लेकिन दूर से सर ही सर नजर आ रहे थे, चारों तरफ स्टॉल लगे थे। तो भाई बता दूं आपको कि कल के परसों के कार्यक्रम यानी 22 तारीख के स्वतंत्रता समारोह में बहुत सारे प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकात हुई, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच भाई। जो मिले वो कहते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई, पर वो भी ऐसा ही मिलना हुआ भाई, स्टेज से दूर से हाथ हिला करके मैंने अभिवादन स्वीकार किया, उनको स्वागतम कहा। आज हम याद करना चाहेंगे, नाम सुना आपने शिवराम राजगुरु का, अरे वो नौजवान जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। राजगुरु, भगत सिंह का नाम तो सुना है ना, सुखदेव थापर का नाम भी सुना होगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उम्र क्या थी उनकी, 21-22-23 साल के ये नौजवान देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के फंदे को हंसते हुए चूम लेते हैं। आज राजगुरु का भाई क्या जयंती है उनकी, आज उनका जन्मदिन पड़ता है। 1908 में महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। श्रद्धा से नमन करते हैं हम उन शहीदों को जिनकी बदौलत स्वतंत्रता मिली, और हर साल भाई जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो उन्हीं को समर्पित है। आइए चिंतन समेटते हैं। और वैसे भाई और भी हैं कुछ जन्मदिन मनाने वाले नाम, जैसे कि अदिति शर्मा, ये एक्ट्रेस हैं, और गीता माधुरी, वैसे तो अपने बाली भाई आएंगे, वो लेके आएंगे सबकी जन्म कुंडली, लेकिन भाई अगर आपके घर परिवार में किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। पूनम यादव एक क्रिकेटर हैं, उनका भी आज जन्मदिन पड़ता है। दीप्ति शर्मा ये भी क्रिकेटर हैं, ये भाई महिलाओं की क्रिकेट टीम की सदस्य हैं। दीप्ति शर्मा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। इनके अलावा भाई और भी बहुत सारे लोगों के जन्मदिन हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने श्रोताओं के परिवारों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जिनका भी जन्मदिन है उनके लिए जो गीत पसंद आए लेकर के उन तक पहुंचा देना मेरी ओर से।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी State Bank of India UK offering 130.1 rupees for £1. एक पाउंड के बदले 130 रुपए 10 पैसे वो दे रहे हैं, रेट अच्छा है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भिजवाने के लिए इस सेवा का फायदा उठाइए। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Like a gold Like a gold
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: क्या बात है भाई, दोस्ती इसी को कहते हैं, अपना जो कुछ भी है सब आधा आधा है। कहाँ होता है ऐसा? मुझे पता है हमारे यहाँ भाई स्कूल टाइम में ना ये नियम था, हम जैसे जा रहे हैं सड़क पर, रास्ते में कोई चीज़ पड़ी मिल जाए तो जिसको मिलेगी साथ चलता हुआ दोस्त उसमें आधा हिस्सा ले लेगा। ये एक यूनिवर्सल कानून समझा जाता है भाई, कोई चीज़ मिले तो दो दोस्त जा रहे हो, तीन जा रहे हो, तीनों बांट लेंगे आपस में। एक दिन मैंने देखा मेरा एक दोस्त ना, मैं बस से उतरा लोकल बस स्टॉप पर, मेरा एक दोस्त मूँगफलियाँ खरीद रहा था, मेरे साथ तीन चार लड़के और भी सारे दोस्त मिले तो जा करके उससे हाथ मिला, सुना भाई क्या हाल है। वो मूँगफली वाले को कहता, वो तोल ही रहा था अभी मूँगफली, कहता है ओ भाई तो अपनी मूँगफली वापस रख ले। बोला क्या हुआ साहब? अरे रख ले वापस यार, ये आ गए हैं कमीने, अब मेरे हिस्से में तो दो चार ही आएंगी, सब बट जाएंगी। मतलब भाई वो कमीने दोस्त भी याद आते हैं यार। क्या कहने, लीजिए साहब जो अपना जो कुछ भी है आधा आधा है और बांट लें। एक चीज़ और है बांटने की, खुशी बांटें, हंसी बांटें, बेबसी भी बांटें भाई, सुख दुख साझे हो जाए तो फिर सुख ही सुख रहें, दुख तो भूल जाए। Win with Jamin Foods. एक कंपटीशन चल रहा है हमारे यहाँ, नोट कर लें, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और रक्षाबंधन के त्यौहार पर लाइका रेडियो नेटवर्क इज सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल बाय गिविंग अवे ए बॉक्स ऑफ ट्रीट्स बाय Jamin Foods. Jamin इज रेनाउंड फॉर माउथ वाटरिंग रेंज ऑफ नमकीन, पिकल्स, मुखवास, पापड़, सो मेनी वेराइटीज भाई फूड में, प्लस एक्साइटिंग रेडी मील लाइक खिचड़ी, पोहा, शीरा, पाव भाजी एंड वेज बिरयानी एज वेल। सो रेडी इन जस्ट 5 minutes by adding hot water, jaminsnacks.com, इस पर आप जा करके और जानकारी ले सकते हैं। अब कॉम्पिटिशन में भाई ये एक हम जो दे रहे हैं इनाम बॉक्स ऑफ ट्रीट्स बाई Jamin Foods, उसे हासिल करने के लिए कॉम्पिटिशन में आपको क्या करना है? सिंपली सेंड अस द वर्ड लव यू Jamin, JAIMIN, कैपिटल में लिखिएगा ये शब्द, ये नाम। क्या लिखना है आपको? लव यू Jamin, वन लक्की पर्सन विल बी नेम्ड, गोइंग टू एड फॉर पर डे वन द प्राइज विनर, हर रोज एक। तो भाई ये होगा, चलिए तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है आगे चल के, फिलहाल जुड़े रहिएगा हमारे साथ। रक्षाबंधन का त्यौहार कब है इसको लेकर के बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं, कब है भाई? बात ये है यार, जिस दिन बहने आ जाए राखी लेके उसी दिन मना लो, जिस दिन राखी आप तक पहुंच जाए। लेकिन एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द काल गणना, और भाई यहाँ इंग्लैंड में जो कहते हैं वो 4 सितंबर को है, तो बहनों को बता दिए जिएगा कि 4 सितंबर को है, उससे पहले पहले आपकी राखी पहुँच जानी चाहिए वरना पैसों में कटौती हो जाएगी।
1: सिर्फ 4 दिन बाकी, रक्षाबंधन मनाइए अपने Jamin Foods के साथ। Jamin Foods, रिश्तों में मिठास हर सेलिब्रेशन के साथ।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

भाई एक भूल सुधार कर लो, 4 सितंबर को तो जन्माष्टमी है, 27 अगस्त को है राखी, 4 दिन बाकी है तो 27 अगस्त को राखी है, नोट कर लीजिए।

0: भाई गीतों को जब थोड़ा बहुत सुनाई पड़ता था वह शब्द समझ में आते थे, हम ऊट पटांग गाते थे कैसे के भैया मेरे लाठी से बंदर को भगाना भैया मेरे राखी। राखी का त्यौहार भाई फिर नोट कर लीजिए, वैसे भारत में कई जगह 28 अगस्त को ये मनाया जाएगा पर यहाँ यूके में कहते हैं कि 27 अगस्त को आप बहन को कह सकते हैं कि वो राखी लेके आ जाएं। राखी का त्यौहार यूके के समय के अनुसार दे से दैट इट इज़ ऑन 27 अगस्त। 4 सितंबर को जन्माष्टमी है और मैं उसमें कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसी समय जब मैं बोल रहा था तो मुझे स्टूडियो में आकर के खुश बताने आई कि आप फिलहाल रुक जाओ सबर करो धीरे चलो। राखी की बात करो, रक्षा जन्माष्टमी की बात करो, फिलहाल भाई जेमिन का कंपटीशन कैसे होगा, किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकती हैं आप, क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा, फिलहाल उसे न्यूज़ समझिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये लाइका रेडियो नेटवर्क है और आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम लाइका
1: गोल्ड। ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: again.
1: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Extra podcast update.
4: आपको बता दें भाई, हमारा नया एपिसोड आ गया है लाइका एक्स्ट्रा पर और उसका टाइटल है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट शोकेस, होस्टेड बाय दीप राजा। जरूर देखिएगा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: There's still time to get EasyJet flights and package holidays this summer. Get it while it's hot, like fan yourself past the ice kind of hot. With flights from £25 one way and package holidays from £369 per person. Book now at EasyJet.com. Get out there. Selected dates and flights August to September. Limited availability. Holidays at all protected. T's and C's apply.
6: Like a goat. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208782

0: on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
1: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
4: Mum, I'm outside.
5: Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
9: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
10: कृष्णना जन्मनो आनंदोत्सव एक रात एक अनुभव
9: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
10: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
11: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी सप्लाई।
12: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
13: परंपरा भी
14: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फोर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
15: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
16: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
17: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.

0: हजार बातें कही जमाना.
1: My name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
0: करेंसी रेट्स नोट कीजिए भाई. आज लम्फाई वाले क्या रेट दे रहे हैं पाउंड का. फॉर इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 130.46 रुपीस. पाकिस्तानी रुपए 378.66. श्रीलंकन रुपए 448.71. बांग्लादेशी टके 166.93. और एक पाउंड के बदले अफगान अफगानी दे आर गिविंग 89.14.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manu Ranjan with Ravi Sharma. LIKA
2: Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of 108.55 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
5: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
7: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel, at all protected. One performer,
11: countless personalities,
10: a whole universe of entertainment.
11: Sunil Grover, live UK tour 2026.
10: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
11: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
10: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
11: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
10: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
12: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
13: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
12: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
14: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
15: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: Hare Krishna. Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
17: Dad.
18: What's wrong, beta?
17: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
18: I will run down to the money exchange now.
17: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
18: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
19: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
20: Royal Chai lai hai, smart solution for your business.
21: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
20: Rich, authentic taste every single time.
21: Royal Chai, brewed for business.
20: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer, terms and conditions apply.
22: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
23: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network.
0: और बहनों भाइयों, अगला गीत हमें लेकर चलेगा 12 बजे की खबरों तक. पर मैं उधर जाते हुए एक ये मधुर गीत या मधुर धुन, एक मधुर ट्यून या फिर एक नया मधुर साज, अब तो नया नहीं है पर उस जमाने में ये बिल्कुल नया था जब ये गीत बना 1954. फिल्मी दुनिया में एक फिल्म बन रही थी नागिन, और इसके संगीतकार हेमंत कुमार साहब को एक ऐसी अनोखी धुन की तलाश थी जो सांप की बीन की जैसी आवाज लगे. अब भाई हमारे देशराज बैसन साहब जो है ये ढूंढ कर खोज कर ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं. और भाई अब धन्यवाद के साथ हम आपको बता रहे हैं कि एक वाद्य यंत्र ईजाद हुआ था उन्हीं दिनों फ्रांस में, नया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, नाम था उसका क्लेवियोलिन. वायलिन तो आपने सुने लेकिन क्लेवियोलिन. हेमंत कुमार के साथ काम कर रहे एक नौजवान संगीतकार ने इस बिल्कुल नए और अनजान इंस्ट्रूमेंट को हिंदुस्तानी सिनेमा में सबसे पहले इस्तेमाल करने का साहस दिखाया. उन्होंने इसी क्लेवियोलिन पर वो मशहूर धुन बनाई जो दुनिया भर में भाई हिट हो गई, सुपर हिट हो गई, मेगा हिट. नागिन बीन नाम से ये धुन भाई, इसमें जो क्लेवियोलिन तो बजा रहे हैं कल्याण जी, वीर जी शाह, और साथ में हारमोनियम पर है संगीतकार रवि, और भाई संगीतकार हेमंत कुमार की उसमें क्या कहें, उनके साथ जो है नागिन फिल्म का संगीत देते हुए उन्होंने ये धुन बजाई, बनाई और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाई ये धुन. आज कल्याण जी भाई की पुण्यतिथि है, श्रद्धा से नमन करते हैं उस महान संगीतकार को.

उन दिनों हेमंत कुमार के असिस्टेंट थे संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह, रवि भी उनके असिस्टेंट थे, लेकिन बाद में कल्याण जी वीर जी शाह ने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया।

0: विल यू मैरी मी, नो बेबी। जहां भी कोई हैंडसम लड़का दिखाई दिया गाना शुरू कर दिया विल यू मैरी मी। खाली नहीं है इतने, हम अभी तो पढ़ाई चल रही है। अब वो पूछती है अभी पढ़ाई चल रही है तो मैं क्या तुम्हारी किताबें फाड़ती हूं? भाई बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए हम आ गए हैं अब इस पड़ाव पर। याद दिला दूं आपको कि कंपटीशन का हमने जिक्र किया था, बस समाचारों के नज़दीक थे, लेकिन आपने तो इतने समझदार हैं आप लोग के क्या भेजना है क्या लिखना है सब कुछ नोट करके भेजना शुरू कर दिया। कितने लोग ऑलरेडी जो है एंट्री कर चुके हैं कॉम्पिटिशन में। तो भाई फिर बता दूँ कि आपने जिन्होंने भेजी हैं थैंक यू वेरी मच। एक कोई विनर होगा और वो अनाउंस नहीं करूँगा मैं क्योंकि वो आगे अनाउंस करेंगे, लेकिन एक विनर आज जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका वो नाम चला जाएगा फाइनल उसके लिए ड्रॉ के लिए। तो जिन लोगों ने भेजे हैं वो का धन्यवाद, और जो अभी भेजना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि आपको एक तो लिखना है जेमिन आई लव यू, हाँ आई लव जेमिन ये ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा आई लव जेमिन, ये लिखने के बाद अपना नाम अपना फ़ोन नंबर अपना ईमेल एड्रेस और अपना होम एड्रेस भी, क्योंकि आपको वो जो इनाम है वो घर के एड्रेस पर डिलीवर कर किया जाएगा। तो कृपया अपना नाम अपना फ़ोन नंबर अपना ईमेल एड्रेस और अपना जो फ़ोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। तो साहब ऑल द बेस्ट, ये लाइका रेडियो नेटवर्क है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK and State Bank of India UK. ऑफर कर रहे हैं भाई, रेट अच्छा चल रहा है बता दूं आपको। अगर आज आप पैसे भेजते हैं तो SBI UK वाले दे रहे हैं एक पाउंड के बदले हाउ मच 130 रुपीज़ एंड 10 पैसे, 130 रुपये और 10 पैसे वो एक पाउंड के बदले दे रहे हैं। यू कैन ट्रांसफ़र वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
4: सप्टेम्बर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे। साउथ लंडन અને લ્યુટન માં ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુ ને ઓન 07931534270। નાટક નું નામ યાદ રાખજો।
5: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
6: Shri Ram Mandir, King Street, South Hall invite you to the Shri Krishna Janmashtami Parv. Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Gyanananand Ji ke Pavan Sanidhya mein 30 August Ravivar ko 26vi Shobha Yatra subah 11:30 baje se Shri Ram Mandir se aarambh hogi, jisme pujan, darshan, bhajan, kirtan aur priti bhojan. Iske atirikt 4 September ko sham 8 baje se bhavya celebration at the Shri Ram Temple, 22 King Street, South Hall. Aap aaiye aur sabko laiye.
7: 07300992823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
8: लोकेशन लोकेशन लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
9: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
8: फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
9: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
8: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
9: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757। ग्रीन्स बाय डैनियो, प्राइम लोकेशन,
8: हाई अप्रिसिएशन
9: इन दुबई।
4: हॉन्स्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
10: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
11: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो, TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
12: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
13: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
14: और भैनों भाइयों, आप जानना चाहेंगे कि इस सप्ताह का आर्टिस्ट कौन है? Artist of the Week. भाई कोई गीतकार, संगीतकार, गायक कलाकार, कोई अभिनेता अभिनेत्री कौन हो सकता है? भाई मैं अगर आपको सरनेम बताऊं तो वो है मिस्टर श्रीवास्तव। अब श्रीवास्तव तो अमिताभ बच्चन भी हैं। श्रीवास्तव तो भाई संगीतकारों में देखें तो हमारे वो एक बड़े प्यारे मित्र थे, वो भी थे। चलो उनका नाम नहीं बता ही दिया आपको भाई, श्रीवास्तव से नहीं पता लगेगा क्योंकि जो उनका मशहूर नाम है और जो उनकी धुनों के लिए जिम्मेदार है वो नाम, फिल्मों में जो चलता है वो नाम है चित्रगुप्त।

0: तलत महमूद की आवाज में ये गीत भाई चित्रगुप्त ने संगीतबद्ध किया था। चित्रगुप्त अपने दौर के महान संगीतकार और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं भाई उनके दो सुपुत्र जो हैं होनहार बेटे आनंद और मिलिंद। आनंद मिलिंद की धुनें भी बड़ी शानदार और कामयाब धुनें नई फिल्मों में आ रही हैं। हम उनकी तो नहीं बजा सकते फिल्मों की धुन क्योंकि वो नेचुरली 2000 से पहले की नहीं होंगी, लेकिन चित्रगुप्त साहब की बनाई धुनों पर आधारित गीत पूरे सप्ताह गूंजेंगे क्योंकि चित्रगुप्त इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

देखने का काम नहीं है, सुन ले और ध्यान से सुन ले। कंपटीशन चल रहा है भाई, विनर का नाम मैं अनाउंस करूंगा, और लेकिन विनर का मतलब विनर चुना जाएगा उनमें से जो लोग पूरी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। यानी पहले तो लिखिएगा आई लव जेमिन, और उसके बाद अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस भी आपके घर का, जहां पर आप डिलीवर कराना चाहते हैं अवार्ड।

भाई लोग सावन का नाम तो याद रखे हुए हैं लेकिन भूल गए ये छतरी क्या होती है, क्या होती है छतरी? अरे कभी बरसेगा, जरूरत महसूस होगी तो पता लगेगा छतरी क्या होती है। सावन

0: कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीसीएस अप्लाई।
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।

0: kapnál Cokloss, abhez Stoploss.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
3: हाँ, ये अब कुछ एक और भाई शूरवीरों को याद कर ले, उन योद्धाओं को जिनका देश की आज़ादी में योगदान। मैंने आपको बता दिया ना कि आज राजगुरु का जन्मदिन पड़ता है, वो जो फांसी का फंदा चूम कर हंसते हंसते झूल गए थे भगत सिंह और सुखदेव के साथ। लेकिन उनके अलावा भाई कुछ और पॉलिटिशियंस का भी आज या तो जन्मदिन या फिर पुण्यतिथि पड़ती है, जैसे कि अरुण जेटली, ये नाम बहुत पुराना नहीं है, आपको याद होगा इनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम भी है अब दिल्ली में। इनकी आज पुण्यतिथि है क्योंकि ये 24 अगस्त 2019 में इनका निधन हो गया था। इसके अलावा एक नेता हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, सिकंदर बख्त, इनका जन्म हुआ था 1918 में। वो भी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन भाई वो भी पार्टी के एक बड़े नेता थे, सिकंदर बख्त, उनका जन्मदिन होता है। और भाई बाकी शिवराम राजगुरु के बारे में मैंने बता दिया। इन सब के लिए अगर कोई गीत समर्पित करें तो कौन सा गीत होगा जिसमें मस्ती भी हो, यादें भी हो, देशभक्ति भी हो।

0: by Coco Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Like a gold.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
4: और लीजिए साहब, रेट सुन लीजिए उनका. वो दे रहे हैं एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 130.5 रुपीस, पाकिस्तानी 378.34 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 448.5, बांग्लादेशी टकाज 167.49 एंड अफगानी 89.17.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
3: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
4: Gold Rate. नोट कीजिए भाई, इस समय सराफा बाजार में सोने का भाव चल रहा है. एक ग्राम सोने की कीमत इस समय है 108.55 पाउंड्स.
3: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
5: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.
6: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
8: देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
7: डेजर्ट सफारी,
8: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
7: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
8: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410. दैट्स 0208574-8410.
9: साउथ हॉल ट्रेवल. Atoll protected.
10: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carry and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: महाराजा टूर्स के साथ नेपाल और भूटान की आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए. अपना सुकून ढूंढिए हिमालय की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मोनेस्ट्रीज, रंग बिरंगी संस्कृति और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए. सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है. आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 0795615486.
14: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
15: Krishna.
16: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
17: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा नरंगमा लंदन पढ़ रंगा से स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा, भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन, ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग. 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
18: Have you noticed the way fans shout at football matches?
19: Oh, wake up!
18: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: और बहनों भाइयों, मनोरंजन कार्यक्रम को समेटने से पहले मुझे बताना है आपको विनर का नाम. भाई वो जेमिन वाले जिसको भेजेंगे वो उपहार, वो गिफ्ट पैक, तो कौन है वो? लेट मी टेल यू, आज के मेरे जेमिन कंपटीशन में द विनर इज़ उनके फ़ोन नंबर में आखिर में आता है 699 एंड हिज नेम इज़ विजय. विजय जी की विजय हुई है. और बहनों भाइयों, बाली भाई आ रहे हैं और भी बहुत सारे कंपटीशन होंगे हमारे कार्यक्रमों में, जुड़े रहिएगा हमारे साथ. पर जाते जाते एक बात कहूँ कि दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो. कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो आज उनको जाने ना दो. एक बात कह देते हैं, सुन लो ध्यान से, हम भूल गए तो तू याद करेगा. अब खुद ही देख लेना मेरे दिल के सबर को, तड़पेगा, रोएगा, फरियाद करेगा. तो रोक लो. कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो आज तुम उनको जाने ना दो.

0: एक ही बात कहना चाहता हूं मैं, द लेगेसी कैरीज ऑन, वी आर रिमेम्बरिंग कल्याण जी वीर जी शाह एंड द लेगेसी कैरीड ऑन विद नन अदर देन विजू शाह. अब 26th डेथ एनिवर्सरी ऑफ कल्याण जी भाई, बॉर्न इन कच्छ, एवरीबडी नोज दे मूव्ड वीर जी शाह, इनके पिताजी, द होल फैमिली मूव्ड टू बॉम्बे टू ओपन अ प्रोविजन स्टोर. फिर वहां से कहानी शुरू होती है और सबसे पहले कल्याण जी भाई ने म्यूजिक डायरेक्शन शुरू किया था और उन्होंने कुछ चार एक फिल्में जो थी 1958 और 59 में जो जिसका म्यूजिक दिया था, जिसके बाद फिल्म सट्टा बाजार और मदारी से और छलिया से आनंद जी भाई ने ज्वाइन कर लिया उनको, तब तक वो असिस्टेंट थे. कल्याण जी वीर जी शाह की जो फिल्में, सोलो फिल्में जो थी वो थी सम्राट चंद्रगुप्त 1958, पोस्ट बॉक्स नंबर 999 1958 की, बेदर्द जमाना क्या जाने 1959, ओ तेरा क्या कहना 1959. अब मैं सेकंड आवर में आपको वो गाने सुनाऊंगा जो इनकी सोलो फिल्म्स के थे और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड आवर मैं आपको वो गाने सुनाऊंगा जब आनंद जी भाई ने कल्याण जी भाई के साथ जुड़कर इन्होंने दो तीन फिल्में जो की थी बिगिनिंग में. फिर उसके बाद तो इस आवर में जो मैं गाने सुना रहा हूँ वो सब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक दौर आया जबकि कल्याण जी और आनंद जी इन्होंने हंगामा कर दिया. व्हाट दे डिड वाज द ड्यूओ कल्याण जी आनंद जी, they embraced western funk music and then you can say synth rock disco music. usme unhone aisa hath mara aur puri industry bollywood ka naksha change kar diya music ka. inka influence tha ek teenager ka, wo teenager ka naam tha viju shah jo kalyan ji ke bete hain. विजू वॉज वेरी टेक्नो सेवी, सो उसने सिंथेसाइजर और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और डिस्को म्यूजिक, सिंथ रॉक, ये सब म्यूजिक उनके, उसके फेवरेट कीबोर्ड्स थे रोलैंड और कॉर्ग जो कीबोर्ड्स थे, उसमें से साउंड्स निकाल कर. फिर तो बाद में ऑफकोर्स ही डिड हिज ओन फिल्म्स जैसे कि गुप्त और त्रिदेव और विश्वात्मा, मोहरा जैसी फिल्में विजू शाह ने की. लेकिन द मेजर इन्फ्लुएंस जब 1970s और 80s में जब डिस्को म्यूजिक का एक दौर शुरू हुआ, डिस्को एंड फंक एरा ऑफ कल्याण जी आनंद जी, ब्लेंडिंग ब्रासी बिग बैंड हॉर्न्स विद डिस्टोर्टेड वावा गिटार्स टू चेंज द साउंड ऑफ बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर्स, जितनी भी एक्शन थ्रिलर्स थी जैसे कि डॉन, उसका संगीत इन्होंने इतना अच्छा बनाया. एंड फिरोज खान वॉज वेरी हैप्पी, जबकि फिरोज खान की फिल्में, जांबाज जैसी फिल्में और कुर्बानी जैसी फिल्में, कल्याण जी आनंद जी ने ऐसा संगीत दिया कि चार चांद लग गए. आज भी वो संगीत सुनाई देता है. मैंने आपको कुर्बानी फिल्म का गाना हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जहाँ पे ऑफकोर्स मनहर उदास की एंट्री जब हुई तब दैट वॉज यू कैन से द क्रेडिट गोज टू कल्याण जी आनंद जी. बट ये गाना मनहर उदास, कंचन, उन्होंने सब ने गाए और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने. फिल्म हादसा जब अमित कुमार ने गाया, ये बम्बई शहर हादसों का शहर है. उसके बाद मैं और गाने सुनाऊंगा ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एरा ऑफ कल्याण जी आनंद जी और सेकंड आवर में द सोलो फिल्म्स ऑफ कल्याण जी भाई एंड व्हेन बोथ ऑफ देम जॉइंड हैंड्स टुगेदर. सो सुनते रहिएगा, कुछ राग आधारित गीत भी है सेकेंड आवर में. यू आर गोना गेट अ रियल ट्रीट ऑफ द ट्रिब्यूट टू कल्याण जी वीर जी शाह इन द फर्स्ट एंड सेकेंड आवर्स. He was active from 1954 to 2000. That was for 46 years out of his 72 years. He passed away on 24th of August 2000, 26 years ago. So, main hoon Bali Brahmbhatt on Like a Gold with Gold Afternoons, doing a tribute of Kalyanji Veerji Shah. Sunte rahiyega, lutf uthate rahiyega. The show is sponsored by, of course, Jaimin Foods. And Midlands walon ko mera bahut bahut namaskar. 412th day of Laika Radio Midlands, jo 1st July 2025 se shuru hua. So, meri awaaz wahan tak bhi pahunchti hai. Waise to duniya bhar mein pahunchti hai, lekin मिडलैंड्स वाले मुझे काफ़ी मैसेजेस भेजते रहते हैं. थैंक यू फॉर योर लवली मैसेजेस ऑलरेडी कमिंग इन बाय रमा पटेल फ्रॉम अहमदाबाद एंड संध्या भाउसर, मनु, राजीव पटेल, सुनीता शर्मा एंड देन हमारे ट्रक वाले M6 पे जो म्यूजिकल M6 बना दिया जिन्होंने विद फुल वॉल्यूम इन हिज ट्रक इज ऑफकोर्स पवन नेहरा जी. And then Vijay Godori, who's been walking so much today, I think he's done about 7.4 kilometers. So he deserves a good drink and a sandwich. And Hasumati ji, thank you. Bharat Gangaram ji, as always, aapke liye ek geet maine chuna hai is hour mein. Nazia Shakil ji, Kapil from Watford. Pammy Singh ji, as always. And Aruna and Bhupendra Patel. Arjun ji, thank you. Thank you very much for your messages.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to, let's see the latest rate here, 130.1. 130.1 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
5: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
6: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: वॉटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
9: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
8: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
9: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल. Today.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24-hour line.
2: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीजेंसी सप्लाई। sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर जापान चेरी ब्लॉसम टूर इन मार्च एंड अप्रैल 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड गेट अप टू 400 ऑफ। कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 0208-951-0111.
3: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel at all protected.
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
8: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
9: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 02087677627।
2: अक्रॉस लंदन, दिस इज बाली ब्रांबाट ऑन लाइक ए गोल्ड।
10: जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ये है

0: आपस में जंग.
1: And this song for, of course, Bharat Gangaram ji, film Dawn.
2: This is Like a Gold. Reminisce those classics.
1: This was South की एक फिल्म थी, उसमें से ये गाना बना था.
3: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए.
1: Original music था, composition इलैयाराजा.

0: प्रणाम। मैं महर्षियों का चेला, किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
1: महाराज?
0: यस
1: योगी,
0: दैट्स राइट।
1: वेलकम।
0: थैंक यू।
1: स्वागत है।

0: यस, ये संगीत आप सुन रहे हैं, दिस वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय नन अदर देन कल्याण जी आनंद जी. मन डोले तेरा तन डोले. दिस वॉज द क्ले वायोलिन. क्ले वायोलिन लोग समझते हैं कि मस्ट हैव बीन एन इंस्ट्रूमेंट मेड आउट ऑफ क्ले, लेकिन वो बात नहीं थी. क्ले वायोलिन इज CLAVIOLIN. क्ले वायोलिन इज अ, यू कैन से, रेयर अर्ली फ्रेंच वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट. इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट, जी हाँ. तो असिस्टेंट कंपोजर ऑफ हेमंत कुमार रवि, एट दैट टाइम द म्यूजिक डायरेक्टर रवि वॉज असिस्टिंग हेमंत कुमार जी, एंड ही हैड वर्कड आउट एन इंडियन, यू कैन से, फोक मेलोडी ऑन हारमोनियम फॉर दिस पर्टिकुलर सॉन्ग मन डोले तेरा तन डोले. लेकिन कल्याण जी भाई एक्सिक्यूटेड द अरेंजमेंट ऑन हिज क्ले वायलिन, मिमिकिंग the continuous, you know, the nasal sliding pitch variations of the real bean jo aata hai, teen-a-dee-da-dee-da-dee-da, bean pe jo bajate hain saap ko attract karne ke liye. To yahi sound inhone clay violin mein se nikala tha. So we are talking about none other than Kalyan ji Veer ji Shah on his 26th death anniversary. All I can explain to you about is, you can say, how shall I put it? इन्होंने जो चार फिल्में जो की थी, अब मैं समझा सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं एक गाना ढूँढ रहा था लाइब्रेरी में, तो मेरा ध्यान वहाँ भी था और आपके तरफ भी था. सम्राट चंद्रगुप्त, फिर पोस्ट बॉक्स नंबर 999, फिर बेदर्द ज़माना क्या जाने, एंड ओ तेरा क्या कहना. तो मैंने जो दो गीत आपको सुनाए वो फ्रॉम पोस्ट बॉक्स नंबर 999, उसमें ऑफ कोर्स कल्याण जी भाई सोलो थे, एंड पीएल संतोषी ने लिरिक्स लिखी थी, एंड दूसरा सम्राट चंद्रगुप्त, उसमें भरत व्यास ने गाना लिखा, और गाना था चाहे पास हो चाहे दूर हो, रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी को इन्होंने गवाया था डूइंग द सोलो फिल्म्स, एंड लेटर ऑन आनंद जी भाई जॉइंड. सो अब मैं आपको जो गीत सुनाता हूँ वो सब है सोलो सॉन्ग्स ऑफ कल्याण जी भाई. एक गाना जो स्टार्टिंग में नींद ना मुझको आए, राग यमन कल्याण में उन्होंने कंपोज किया था, और दूसरा एक गाना था चाहे पास हो, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कौन से राग में था, आई कॉन्ट फिगर आउट, पर अगर याद आ गया तो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन नेक्स्ट सॉन्ग ऑब्वियसली इज गोना बी बेदर्द ज़माना क्या जाने. मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून, रिमेम्बरिंग कल्याण जी वीर जी शाह ऑन हिज 26th डेथ एनिवर्सरी. द शो गोज to Midlands and in Greater London. Not only that, I can also say that this show, Gold Afternoons, is sponsored by Jaimin Foods.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 130.1 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Jaimin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara najik na Asian shops ma.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली प्रेजेंट्स एन इवनिंग ऑफ एलिगेंस विद द लेजेंडरी अनूप चलोटा.
5: जाम चलने लगे दिल मचलने लगे।
4: ऑन संडे 30th ऑगस्ट एट क्वींस थिएटर रॉमफर्ट, डोर्स ओपन 5 PM, शो स्टार्ट्स 6 PM, होस्टेड बाय अनीसा नासिर। तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से। बुक नाउ एट queens-theatre.co.uk। रेडियो पार्टनर्स लाइक अवर रेडियो नेटवर्क।
3: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
4: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
4: high appreciation
6: in Dubai.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: And Kalyanji Veerji Shah doing solo films with the lyrics of Bharat Vyas. वो थी फिल्म बेदर्द ज़माना क्या जाने. इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशंस इन्होंने बनाई थी, लेकिन आगे जाते हुए जब दोनों भाइयों ने हाथ मिला लिए तो और भी बढ़िया कॉम्पोजिशंस और म्यूज़िक आने लगा. नेक्स्ट गाना जो होगा दैट विल बी ओ तेरा क्या कहना. दैट वाज अ सोलो फिल्म बाय कल्याण जी भाई एंड लिरिक्स वर रिटन बाय इंदिवर. इतना खूबसूरत गाना है. जो सिंगर जिनकी आवाज़ हेमंत कुमार के साथ मिलती है, विजय गुडोरी नोज, इट्स सुबीर सेन एंड कमल बारोट, उन्होंने गाया है ये गीत. सुनते रहिएगा. वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ कल्याण जी वीरजी शाह, 26th डेथ एनिवर्सरी. यूजुअली कल्याण जी वीरजी शाह की जब एनिवर्सरी आती है तो वी ऑल प्ले जस्ट कल्याण जी आनंद जी के सब गीत बजाते रहते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द म्यूजिक दैट कल्याण जी भाई हैड डन सोलो ऑन इज ओन. सो कुछ गाने मैं पेश कर रहा हूँ, उसके बाद दोनों भाई हाथ जोड़कर मतलब दोनों ने दे जॉइंड हैंड्स टुगेदर इफ आई ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश एंड दे डिड सॉन्ग्स ऑफ फिल्म मदारी, छलिया. ओ माय गॉड, क्या म्यूजिक निकला. सुनते रहिएगा.
3: ये है लाइका गोल्ड.
4: हाय, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.
2: अ फिल्म दैट कल्याण जी भाई डिड ऑन हिज ओन सोलो. ओ तेरा क्या कहना, दिल लेके जाते हो कहाँ.

0: यस ओ तेरा क्या कहना। अब कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया कि आपने बोला कि म्यूजिक डायरेक्टर रवि वॉज दी असिस्टेंट ऑफ हमारे हेमंत कुमार, जबकि असिस्टेंट तो कल्याण जी भाई थे जिन्होंने वो नागिन में वो क्ले वायलिन का पीस बजाया था। इसी बात ऐसी होती है कि मैं आपको कुछ बताता हूँ। हेमंत कुमार डिस्कवर्ड रवि, म्यूजिक डायरेक्टर रवि, इन 1952 एंड इनिशियली हायर्ड हिम एज अ कोरस और बैकिंग वोकलिस्ट फॉर द पेट्रियोटिक सॉन्ग वंदे मातरम इन द फिल्म आनंद मठ। फिर क्या हुआ, हेमंत कुमार वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई रवीज टैलेंट एंड नॉलेज ऑफ उर्दू, तो हेमंत कुमार ब्रॉट हिम ऑन एज अ म्यूजिक असिस्टेंट। अब उन्होंने कौन सी फिल्में की थी एज असिस्टेंट, हेमंत कुमार के असिस्टेंट रवि जिन्होंने फिल्में की थी सम्राट, शर्त, जागृति, चंपाकली एंड द मासिव हिट नागिन। अब ये नागिन में जो गाना था मन डोले मेरा तन डोले, उसमें रवि जी ने म्यूजिक हारमोनियम पे सजाया हुआ था अंटिल ऑफ कोर्स कल्याण जी भाई केम विद हिज क्ले वायलिन एंड ही डिड द म्यूजिक फॉर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। सो आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि असिस्टेंट थे रवि और म्यूजिकली देखा जाए तो कल्याण जी भाई ने ज्वाइन करके उनको क्ले वायलिन पे ये म्यूजिक बजा के दिया था एंड दे ऑल्सो वर एट वन पॉइंट असिस्टिंग हेमंत दा। सो कल्याण जी आनंद जी की बात करूं तो बहुत लंबा सिलसिला बन जाएगा, लेकिन आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई दिस फैक्ट के द म्यूजिक डायरेक्टर रवि वॉज द असिस्टेंट टू हेमंत कुमार ड्यूरिंग दैट फिल्म मेकिंग ऑफ नागिन। ओके विजय गोडोरे जी, यस यस आपने ये सवाल उठाया था, सवाल तो नहीं उठाया था बट यू सेड के ये बात पे, तो आई होप द मैटर इज क्लियर विद यू।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Oh yes, Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Leica Extra Podcast Update.
0: Okay, we've reached podcast episode number 30. The title is British Asian Trust Showcase, hosted by Deep Raja. Deep Raja speaks to Hitan Mehta, OBE, Chief Executive of the British Asian Trust, about the organization's work. So, Leica Extra Podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here.
2: Leica Gold.
3: You're listening to Bali Brahmbhatt in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste, and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।
6: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय।
7: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस। खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर। सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
8: live on Sunday the 1st of November. And unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
9: Dad!
10: What's wrong, beta?
9: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Dadi in India.
10: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
10: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
12: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
14: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected. Have a

0: August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box, and you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box, celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
1: Are we there yet?
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
1: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
1: I switched to Simsy before we left London.
2: Simsy? Since when are you the tech expert?
1: Since I decided I want a stress-free holiday.
3: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
1: T's and C's apply.
4: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा भक्ति नासुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 079-4092-4667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823.
6: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. टीएनसी सप्लाई.
7: नोक झोक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें. दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार. सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ.
8: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू. जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन.
9: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.

0: फिल्म है मदारी, जब दोनों भाइयों ने साथ में काम किया, कल्याण जी आनंद जी।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड नॉन स्टॉप क्लासिक्स।
0: दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑफ कल्याण जी आनंद जी, फिल्म सफर। यस, फिरोज खान वैसे तो राजेश खन्ना, लेकिन इस गाने के लिए इंदिवर जी ने लिरिक्स लिखे।

मेरा प्यारा दोस्त मच्छी यानी कि सुरेश शर्मा, डॉक्टर सुरेश शर्मा, उनकी वाइफ सुलक्ष, हमारी भाभी जी का बर्थडे है आज. सो द नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम सुरेश टू सुलक्ष जी, हमारी भाभी के लिए. फिल्म है पारस, मुकेश जी और लता मंगेशकर जी ने गाया है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक मुकेश जी और सुलक्ष जी, हमारी भाभी जी, वो दोनों गाएंगे ये. तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, हैप्पी बर्थडे.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: हॉन्सलो अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास
2: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी
3: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्सलो TW3 1QT कॉल करें 07487-687-885
4: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627
5: कैरेटिनो बेटर घी द हेल्थियर लो प्राइस कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर घी अल्टरनेटिव कैरेटिनो बेटर घी अवेलेबल इन टेस्कोस एज़्डा मॉरिसंस एंड लोकल ग्रोसरी stores. Caratino Better Ghee.
6: Like a Gold. London का number one Asian retro music station अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB digital radio पर Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे.
7: Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: And that happens to be a beautiful song. And the song actually is काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का 1959 का, लता मंगेशकर जी ने क्या गाया, दगा दगा वही वही. एंड व्हाट अ कंपोजिशन बाय अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक, दैट इज चित्रगुप्त. चित्रगुप्त हु इज द फादर ऑफ आनंद मिलिंद द ड्यूओ. यस. एंड क्या क्या फिल्में इन्होंने की है, ओ माय गॉड. जबक से लेकर, भाभी से लेकर, ऊंचे लोग, आकाशदीप कहो, औलाद कहो, मैं चुप रहूंगी, एंड देन गंगा की लहरें, एंड कभी धूप कभी छांव. माय गॉड, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने की. एंड आनंद मिलिंद जो सीखे इनसे, तो असली गुरु तो आनंद मिलिंद के इनके पिताजी चित्रगुप्त ही थे. सो आई होप यू एंजॉयिंग द सॉन्ग, और एंजॉयड द सॉन्ग आई शुड से. एंड नॉट ओनली दैट, आई एम गोना गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन टाउन, बिकॉज लॉट्स ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन अराउंड इन टाउन, एंड दिस इज व्हाट इट इज. कविता कृष्णमूर्ति लाइव, द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म्स लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st of November, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज अ दिवाली स्पेशल. टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस, दैट इज रॉयल अल्बर्ट हॉल बॉक्स ऑफिस, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. एंड कविता कृष्णमूर्ति जी विल कम ऑन Laika Gold, Gold Afternoons in this particular show on 27th of August to talk about it. So, jude rahiyega mere saath, 27th ko hum unko sunenge. And Laika Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at laikaradio.com.
1: Tune in to Laika Gold, London's number one Asian retro station on the Laika Radio mobile app.
2: Gold Afternoons is sponsored by Jemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Two businesses,
7: same town,
6: same service.
7: One appears on page one of Google,
6: the other doesn't.
7: Guess which one gets the customer?
6: The truth is brutal.
7: The first page of Google gets the business.
6: Everyone else gets what's left.
7: So here's the real question:
6: when your customers search for what you sell, do they find you?
7: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
11: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
13: कृष्णना जन्मनो आनंद उत्सव एक रात एक अनुभव
12: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
13: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. Indian Idol fame Sugandha Date live in concert. Sunday the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
15: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
17: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
18: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: गोल्ड पर सुनिए
1: गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रम्बर्ट, प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय जेमिन फूड्स, द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिंगिंग ऑथेंटिक फ्लेवर्स टू योर टेबल एवरी डे. फाइंड जेमिन एट एशियन स्टोर्स नियर यू.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: पल भर के लिए
4: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज. इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद याफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा. गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर. टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25. बुक टिकट्स एट heroartcenter.com. बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02037737161. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक रेडियो नेटवर्क.
5: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
7: Dreaming of paradise?
8: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
9: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
8: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
9: At all protected.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
9: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 PM to 8 PM at Navnath Center, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
6: Shri Ram Mandir, King Street, South Hall invite you to the Shri Krishna Janmashtami Parv. Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Gyanananand Ji ke Pavan Sanidhya mein 30 August Ravivar ko 26th Shobha Yatra subah 11:30 baje se Shri Ram Mandir se aarambh hogi, jisme pujan, darshan, bhajan, kirtan aur priti bhojan. Iske atirikt 4 September ko sham 8 baje se bhavya celebration at the Shri Ram Temple, 22 King Street, South Hall. Aap aaiye aur sabko laiye.
10: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. टीएनसी अप्लाई. फ्रॉम ब्रेथटेकिंग वेडिंग ज्वेलरी टू द फाइनेस्ट डायमंड रिंग्स, डू कम इन एंड सी अस एट मीनार ज्वेलर्स टू क्रिएट द परफेक्ट सिंबल ऑफ योर लव स्टोरी. मीनार ज्वेलर्स, द Diamond Specialists. Call 02087672142. Sonatours.co.uk. Special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of August and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 02089510111.
11: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: पे पहुंचेंगे।
1: करफिदा
0: जान को
1: मार ले,
0: मैदान को
1: रोक ले,
0: बांध दिया
1: मोड़ दे,
0: तूफान को
1: हिम्मत कभी न तोड़ेंगे,
0: दुश्मन को न छोड़ेंगे,
1: घुटने कभी न टेकेंगे,
0: मुड़ के न हम देखेंगे।
2: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: साजिद भाई, सॉन्ग गोइंग ऑल द वे टू लेस्टर, मिडलैंड्स वालों नमस्कार।
1: The Leica Radio Network, the perfect soundtrack for a British summer heatwave.
0: Postbox 999 Kalyanji Bhai solo, and next is of course Sandy Shah and Raj Bardhan on Leica Radio Midlands. Enjoy the two songs. Rafi Saab aur Asha Bhosle ji ga rahe hain isme. नेक्स्ट बेदर्द जमाना क्या जाने।

0: Drive with Sandy Shah. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: And as you know, they're known for their competitive holiday deals to Dubai. So contact Southall Travel today on 0208 574 8410. And don't forget, Southall Travel is at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Like a gold.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com
4: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड
4: विजिट travelhubworld.com
5: Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Bobby, and more surprises on the night.
6: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snill Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
5: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: Dad.
8: What's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
7: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
11: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
10: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
11: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019 238 83100 Atoll Protected.
13: South Hall, Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
14: Bikaner wala, parampara bhi.
15: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे टेस्टी स्नैक्स मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB कॉल 07795181001
16: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर हॉलिडे ऑफ अ लाइफटाइम विद अमेजिंग डिस्काउंट 14 डेज कैनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027 बुक बिफोर द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड गेट 600 ऑफ ऑल लूज द डिस्काउंट कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 0208951011

0: सरप्लस अब है स्टॉप लॉस।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: The spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: झूठ बोला सैंडी शाह ने झूठ बोला
3: ऑन गोल्ड ड्राइव.
4: थैंक यू टू एवरीवन हू इज टेकन पार्ट सो फार. आई हैड फॉरगॉटन हाउ नाइस दैट सॉन्ग इज. नॉट दैट आई हैड फॉरगॉटन, आई हैडन्ट हर्ड इट फॉर सो लॉन्ग फ्रॉम द फिल्म राज एंड आई थॉट लेट्स पुट इट ऑन ड्राइव. वंडरफुल, रियली एंजॉयड दैट. सो थैंक यू एज आई सेड टू यू वन एंड ऑल फॉर टेकिंग पार्ट सो फार इन झूठ बोला एंड सम वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स कमिंग माय वे व्हिच इज ऑलवेज गुड. So, based on the time and the amount of music I want to put through, this is going to be the last chance you've got. If you've not done it so far, if you are one of our silent listeners, have a go. If you're still debating, karu ya na karu, karo. Honestly, nothing to lose. Two statements I'm sharing with you for the last time are, A, India is one of the largest producers of tea in the world. B, black pepper was originally grown in South America, then shipped to Asia. Which one's the lie?
3: WhatsApp message Like a Gold now on 0744 23 23 23. Gold Drive with Sandy Shah. Making summer feel better. This is Like a Gold.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर KFurniture.co.uk पर जाएं।
4: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
5: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: still heavy on the M4 onto the elevated section eastbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. It's queuing on the A312 the partway southbound before the M4 Junction 3. A312 Church Road and Mandeville Road, heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northolt Station. Sandycombe Road still closed in both directions between Burdett Road and Windsor Road. That's down to an accident. Slow on the A4020 Uxbridge Road between the Parkway and Southall Park, and queuing on the A406 North Circular Road in both directions at the Hanger Lane Gyratory. To the Tube, and severe delays on the Jubilee Line due to an earlier trespass incident at Canning Town and earlier fire alert at Stratford.
1: From the first time they lose a
2: baby tooth, look, Mum!
1: To the countless times they forget to mention their
3: ingredients for food tech tomorrow!
1: To the last time you hear that school was
4: yeah, right.
1: Kids grow up fast. Luckily at Tesco, we have back-to-school uniform that grows with them, including everything they need like trousers and skirts with adjustable hems and waists. So you can focus less on the cost and more on all this. Tesco, every little helps. Available in the majority of larger stores and online.
5: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
6: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
9: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
8: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
9: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे. Shri Ram Mandir, King Street, South Hall, invite you to the Shri Krishna Janmashtami Parv. Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Gyananda Ji ke Pavan Sanidhya mein 30 August Ravivar ko 26th Shobha Yatra subah 11:30 baje se Shri Ram Mandir se aarambh hogi, jisme pujan, darshan, bhajan, kirtan aur priti bhojan. Iske atirikt 4 September ko sham 8 baje se bhavya celebration at the Shri Ram Temple, 22 King Street, South Hall. Aap aaiye aur sabko laiye. वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

0: आप लोगों के लिए मैंने गीत क्या लगा दिया, तो आप लोग आ भी गए ना, देखो ऐसे आपका स्वागत करना पड़ता है। एक तो पहले आते से झूम रही है आप लोग सब, और उसके बाद में देखो मैंने देखा एक सपना, मैं आई आई आ जाओ, मैं भी आ गई, आप भी आ गए। सो आप और हम मिलके मनाएंगे मोटिवेशनल मंडे ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। पूछें आप सबसे कैसे हैं आप सब। मंडे शुरू हो गया, मंडे की इवनिंग आ गई, जैसा भी था बढ़िया था दिन, शाम आ गई और पूरी 3 घंटे की एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे इन नाजुक कंधों पे। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है और दे धनाधन सारे के सारे प्यारे प्यारे धुरंधर आके अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। दिस इज एक्चुअली आई लव द पार्ट ऑफ द शो। यहाँ पे आते से जब मैसेजेस सबके शुरू हो जाते ना, सो मेरा उत्साह द्विगुणित हो जाता है, द्विगुणित मतलब डबल, एंड दैट्स द रीजन आई लव माई हिंदी एट टाइम्स। जी तो सवाल, हाँ बिल्कुल, ऐसे कैसे होगा कि मैं आपको आराम से बैठ के सिर्फ गीत सुनाऊँ। हाँ असाइनमेंट तो होगा हमेशा की तरह, दीदी लाई है असाइनमेंट आप लोगों के लिए, और उसके बाद में लाइफ थियरी, ब्यूटीफुल लाइफ थियरी, उसके बारे में बात करेंगे, एंड बाकी आवर्स में जो फीचर्स हैं वो तो करेंगे। ओके बचपन में लेके चलती हूँ फिर से, है ना, बड़ा प्यारा सा हमारा बचपन होता है सबका, लेकिन इस बचपन में जो टॉर्चर से आप और हम जो गुजरे हैं, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, दो चीज़ें तो हम सब ने सुनी हैं। ओके अब इन दो चीज़ों में से ज़्यादा किसने क्या सुना है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। जब हम छोटे थे और अपने पेरेंट्स की अगर बात नहीं सुनते थे, तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि बेटा बिहेव योरसेल्फ, नहीं तो पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी। एक तो ये, और दूसरा अगर गलती से किसी भी फल का अगर बीज पेट में चला गया तो अब तो तुम पेड़ बन जाओगे, है ना। तो ये पेड़ वाला थिंग हैपेंड विथ मी कि जो छोटे से अमियाँ होती है ना, आम होते हैं, कच्ची कैरी होती है बिल्कुल, वो उसका आम होता है, तो मेरे मामा जी का फार्म हाउस था, हम लोग जाके वो आम के पेड़ जो होते थे मैंगोस वहाँ से तोड़ के लाते, तो मुझे ना ऐसे पिल्लू सा एकदम इत्तू सा छोटू सा जो एक मैंगो रहता था ना येल्लो वाला, वो मिल गया और मैंने खा लिया तो वो गुटली सहित मेरे पेट में चला गया, एंड आई वॉज द सेंटर ऑफ ऑल द मजाक मस्ती चिढ़ाना एवरीथिंग। बस मैं पूरा हमारा जो परिवार थे 25 लोग वहाँ पे जो जमे थे, मेरे मामा मामी ऑल कजिन्स एवरीबडी, और बिकॉज आम के पेड़ घर के साइड में थे तो आम के पेड़ों की शाखाएँ है ना, जो डालियाँ थी वो मेरे कजिन्स तोड़ तोड़ के ला रहे थे, एंड वो लोग मेरे पीछे लेके खड़े थे कि अब ये पेड़ बन गई। सो दिस इज हैपेंड विथ मी, आई वॉन्ट टू हियर योर किस्से कहानियाँ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 130 इंडियन रुपीस एंड 10 पैसे। Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's

0: मर जाएगी।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना है। 7:29, इट्स 7:29। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम है द इवनिंग शो विद अश्विनी। एंड जनरली इस समय आप और हम लाइफ थियरी के बारे में बात करते हैं। आज की लाइफ थियरी द लव थियरी, दैट्स द नेम ऑफ टूडेज लाइफ थियरी। एक कपल था जिसमें बीवी अलग अलग खाने की जो आइटम्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो बना के अपने हस्बैंड को खिलाती थी। अब उनका हस्बैंड कभी तारीफ नहीं करता था। हस्बैंड जो था उसे घूमने का बड़ा शौक़ था, वो घूमने से बड़ा प्यार करता था, तो वो अपनी बीवी को कार में बिठा के लेके जाया करता था कि चलो आज यहाँ घूमने चलेंगे, आज वहाँ घूमने चलेंगे। बीवी सोचती थी कि अरे मैं इतना प्यार से इतना टेस्टी खाना तुम्हारे लिए बनाती हूँ और तुम कभी कुछ बोलते नहीं। हस्बैंड बोलता है अरे मैं तुम्हें इतना घूमने लेके जाता हूँ, तुम कभी मेरी तारीफ़ नहीं करती, कभी इस चीज़ को नहीं समझती। दोनों बैठे और दोनों लड़ रहे थे इस चीज़ पे। थोड़ी देर बाद में शांति से दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। दोनों ने यह सवाल एक दूसरे से पूछा और दोनों ने कहा बे इंतहा। अब आते हैं मेन सवाल पे, प्यार। हमारी ज़िंदगी में प्यार देखने का हमारा नज़रिया क्या है। दोनों भी अपनी अपनी जगह सही थे, दोनों भी बे इंतहा एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, पर इनकी प्यार की डेफिनेशन एंड लव लैंग्वेज अलग थी। वाइफ की लव लैंग्वेज थी खाना बना के खिलाना, रोज़ वैरायटी ऑफ खाना, यम्मी डिलीशियस खाना। एंड हस्बैंड की लव लैंग्वेज थी बाहर घुमा के लेके जाना। दोनों अपनी जगह सही थे लेकिन ये चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। पर जब बैठे बात हुई तब प्यार तो बे इंतहा है, तो गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। गड़बड़ थी एक दूसरे की प्यार की लैंग्वेज को समझना। हम सामने वाले से अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे उसी तरीके से प्यार करें जैसे हम चाहते हैं। कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है, कम्युनिकेट कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन सामने वाले का भी प्यार करने का तरीका अलग वे होता है। हमें वो छोटी छोटी चीज़ें जो सामने वाला हमारे लिए करता है उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। वो छोटी छोटी चीज़ें भी तो प्यार ही है। हर टाइम पे आई लव यू, बड़े बड़े महंगे तोहफे, ये नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो सुबह से लेकर शाम तक जो एक्ट्स आप अपने उस स्पेशल पर्सन के लिए करते हैं ना, उसमें भी प्यार होता है। प्यार की हर किसी की अपनी अपनी परिभाषा होती है एंड उस परिभाषा पे ही आपका रिलेशनशिप डिपेंड करता है। आपकी प्यार की परिभाषा क्या है मुझे मत बताइएगा। अपने आप को ये ज़रूर पूछिए और इस पर थोड़ा चिंतन मनन कीजिए। माई लव लैंग्वेज फॉर यू ऑल, अच्छे अच्छे गीत जो प्ले करती हूँ। कैसी लगी आज की थियरी जरूर बताइएगा।
1: ये है लाइका गोल्ड।

0: 10 with Jamin Foods.
1: तो भाई जैमिन फूड्स के साथ में हम क्या करने वाले हैं सेलिब्रेट रक्षाबंधन। तो लाइका रेडियो नेटवर्क रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहा है बाय गिविंग अवे जैमिन के फूड ट्रीट्स। अब ये कंपटीशन नहीं है अभी, पर फिलहाल मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि जैमिन जो है इनके जो भी ये लाते हैं नमकीन, पिकल्स, मुखवास, पापड़, ये दीज आर माउथ वाटरिंग डिशेज। एंड साथ में इनकी रेडी मील्स भी हैं, अब खिचड़ी, पोहा, शीरा, पाव भाजी, वेज बिरयानी, और ये केवल 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। बस करना क्या है, वो जो पैक है उसमें हॉट वाटर डालिए एंड के ये यमिलिशियस डिशेस रेडी। jaminsnacks.com पे जाइए, इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। और साथ में ही लिसन दिस रक्षाबंधन फ्राइडे 28th of August फॉर यू टू विन ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क। उस दिन आपको गिफ्ट मिलेंगे, जरूर सुनिएगा।
2: सिर्फ 4 दिन बाकी, रक्षाबंधन मनाइए अपने जैमिन फूड्स के साथ। जैमिन फूड्स, रिश्तों में मिठास हर सेलिब्रेशन के साथ।
1: चलिए मिला लेंगे एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 7:37 हो चले हैं। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन गेटो मैनचेस्टर। आप सबसे मैंने सवाल पूछा है कि बचपन में कौन सी चीज़ आपने ज़्यादा सुनी है। घर वालों ने कहा था कि अगर तुम बिहेव नहीं करोगे तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। जी हाँ, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, ये एक डर दिखाया जाता था। दूसरा डर हमें ये दिखाया जाता था, दैट वॉज अगर किसी फल का बीज हमारे पेट में चला गया तो हम पेड़ बन जाएंगे। इसमें से कौन सी चीज़ आपने ज़्यादा सुनी है? एंड किसी ने कहा कि क्या बात है अश्विनी, मौसम ठंडा ठंडा हो गया। फॉर मी इट्स मौसम मस्ताना एंड आई एम एज हैप्पी जैसे मोकेम्बो खुश हुआ था।
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: From the first time they lose a
5: baby tooth, look mom,
4: to the countless times they forget to mention their
6: ingredients for food tech tomorrow,
4: to the last time you hear that school was
7: yeah, all right.
4: Kids grow up fast. Luckily at Tesco we have back to school uniform that grows with them, including everything they need like trousers and skirts with adjustable hems and waists, so you can focus less on the cost and more on all this. Tesco, every little helps. Available in the majority of larger stores and online.
0: This is Ash Winnie on Leica Gold.
8: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
9: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: विजिट travelhubworld.com।
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
12: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203-773-6333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra.
13: Shri Ram Mandir, King Street, South Hall invite you to the Shri Krishna Janmashtami Parv. Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Gyananand Ji ke Pavan Saridhya mein 30 August Ravivar ko 26vi Shobha Yatra subah 11:30 baje se Shri Ram Mandir se aarambh hogi, jisme pujan, darshan, bhajan, kirtan aur priti bhojan. Iske atirikt 4 September ko sham 8 baje se bhavya celebration at the Shri Ram Temple, 22 King Street, South Hall. आप आइए और सबको लाइए।
0: आप
7: after a sold-out show at the Royal Albert Hall. Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
14: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.

0: सरप्लस अब है स्टॉप लॉस।
1: लंडन जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन लंडन। बॉलीवुड एक्टर आफताब शिवदसानी, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिखा और सोलफुल सिंगर मयूरी पटालिया लाइव हैरो में। Saturday 3rd October 7 PM Harrow Art Center. Tickets अभी बुक कीजिए Harrow Art Center Box Office से। More information के लिए call 0777-161-5800. Exclusive Radio Partner Leica Radio Network.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner.

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: अश्विनी ब्राइटनिंग अप योर वीकनाइट्स।

0: making summer feel better on the Leica Radio Network.
1: Leica Gold.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 130.53 इंडियन रुपी, 378.36 पाकिस्तानी रुपी, 448.43 श्रीलंकन रुपी, 167.38 बांग्लादेशी टाका, 89.04 अफगान अफगानी, 1.36 यूएस डॉलर्स, 176.52 केनियन शिलिंग, 63.43 मॉरिशियन रुपी.
3: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £110.09 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: भाई जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से फ्राइडे है आपका और मेरा साथ, शाम 7 से 10 बजे तक. मोटिवेशनल मंडे मना रहे हैं आप और हम, तो मोटिवेशनल गीत कौन सा है? हाँ, अभी नहीं, नेक्स्ट आवर में. और हमारी जो लाइफ थियरी है, द लव थियरी, इट विल बी अपलोडेड ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ रेडियो वाली अश्विनी. तो मेरी जो लाइफ की अदर गतिविधियाँ हैं, मेरी लाइफ के अपडेट्स जो होते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग एज वेल, वहाँ पे आपको देखने जरूर मिलेंगे. रेडियो वाली अश्विनी इज माई इंस्टाग्राम एंड थियरी तो आपको वहाँ देखने मिलती ही मिलती है. सो यस, मैंने सवाल किया कि पुलिस का डर ज़्यादा दिखाया गया या आपको अगर सीड आपके पेट में गया है किसी फल फ्रूट का तो आपको बताया गया कि आप पेड़ बन जाओगे. तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हाँ, हमें बड़ा बड़ा परेशान किया गया इस चीज़ पे कि कोई अगर सीड चला गया है, चाहे वो नींबू का हो, किसी भी फ्रूट का हो, कि बस अब तुम पेड़ बन जाओगे. एंड एक्चुअली हम बच्चे रहते हैं तब कितने इनोसेंट रहते हैं ना, वो इनोसेंस ऑब्वियसली

0: धीरे धीरे बड़े होते हैं वो इनोसेंस चला जाता है एक्चुअली. रेयरली यू वुड फाइंड समबडी हु इज एन एडल्ट एंड यू विल से कि अरे ये कितने इनोसेंट हैं, है ना. बट हैव यू सीन लेटली आई फाइंड एडल्ट्स क्यूट एज वेल. मुझे पता नहीं क्यों, जब ना कभी कभी ग्रोन अप एडल्ट्स भी बिहेव करते हैं थोड़े बच्चों जैसी हरकतें करते हैं. सो वी शुडंट बी गेटिंग अपसेट विद देम, बट इंस्टेड उनमें छुपा हुआ जो एक बच्चा है ना उसे अगर देख लेना आप तो शायद आप अपना मूड खराब नहीं करेंगे और ना ही उन्हें कुछ बातें सुनाएंगे. ओके, इट दिस थिंग वर्क्स फॉर मी, इसलिए मैंने आपसे शेयर की है. लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर, द फर्स्ट आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी है जो सुना रही हूँ आपको, दैट इज किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में रामपुर का लक्ष्मण. वॉल्यूम अप रखिए, यू विल एंजॉय दिस वन.
1: दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
2: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
3: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
4: South on travel 7 days a week. South on travel 24 hours a day, we're at our peak.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Southall Travel.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there.
6: Southall Travel. At all protected.

0: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
1: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
0: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
0: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
2: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
3: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
4: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB, कॉल 07795181001।
5: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक,
6: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
5: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ। 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
7: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
8: The Evening Show with Ashwini.
7: L-Y-C-A.

0: Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 130 इंडियन रुपी एंड 10 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज़ एंड सीज़ अप्लाई.
1: आइए जी आइए. वेलकम. दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. मोटिवेशनल मंडे बना रहे हैं आप और हम. शाम 7 से 10 रहेगा आपका और मेरा साथ. समय कितना जल्दी बदलते रहता है. कुछ अगर कांस्टेंट है तो वो है चेंज, बदलाव. एंड बदलाव के लिए हम सबको हमेशा तैयार होना चाहिए. जिंदगी में कभी भी किसी भी पड़ाव पे ये बदलाव आता रहता है. अगला ट्रैक आपको सुनाने वाली हूँ, उसके पहले घर घर की कहानी. अब घर घर की कहानी में हर घर में एक रूल होता है ना. सो मेरे घर में, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पे, मेरी आई के यहाँ पे रूल ये था, विच ऑब्वियसली आई थिंक एवरी गर्ल फॉलोज द रूल विच शी हैज लर्नड फ्रॉम हर मम. एंड दैट इज़, वो मेरे घर में भी रूल चलता है अभी. दैट इज़, अगर घर में कोई मेहमान आते हैं तो पहले उनके लिए पानी लाऊं. आई एम श्योर सारी एशियन फैमिलीज़ में ये बहुत कॉमनली होता होगा, बट आपके यहाँ पे और भी कुछ अलग रूल है तो मुझे बताइए. हमारे पे सबसे पहला था मेहमान आते से, यस, पानी लाओ एंड एल्डरली लोग हैं तो उनके पैर छूना चाहिए. ये दो चीज़ें तो हमारे पे मस्ट थी. एंड देन आई हैव टॉट द सेम थिंग टू माई किड्स एंड दे फॉलो इट. आपके यहाँ पे क्या था? घर घर की कहानी. इस सेगमेंट में हम बात करते हैं हमारे घर की कहानियों के बारे में. सो दिस वॉज मेरे घर की कहानी. आपके घर की कहानी ज़रूर बताइएगा. अगला ट्रैक अपना देश फिल्म से.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेते हैं एक बार घड़ियाँ, देखते हैं टाइम कितना हुआ। 8:28, इट्स 8:28। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि एक अजब और गजब खबर मैंने पढ़ी है और अजब और गजब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में तो शेयर करती हूँ। तो ये अजब गजब खबर क्या है, बनारस में दो लड़कियाँ अरेस्ट हुई, और ध्यान से सुनिएगा, वो दो लड़कियां अरेस्ट इसलिए हुई हैं कि रास्ते चलते हुए लड़कों को वो छेड़ रही थी। अब इस पे हंसे मुस्कुराए क्या कहे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, बट टेबल्स हैव टर्न्ड फॉर श्योर। सो या दैट वाज एंड दिस न्यूज इज गेटिंग पॉपुलर, एक्चुअली काफी पॉपुलर हो रही है। सो आई डोंट नो व्हाट टू से, do you want to say something over this?
0: ye hai Laika Gold, the evening show with Ashwini.

0: रेखा एंड विनोद मेहरा, मतलब उफ, व्हाट अ कपल, क्या दिखे हैं दोनों साथ में, बहुत खूबसूरत लगते हैं. ऑब्वियसली रेखा जी एंड अमिताभ बच्चन जी तो अमर जोड़ी है. इवन विद विनोद मेहरा, आई लव रेखा जी का जोड़ी विद विनोद मेहरा. एंड घर फिल्म का जो टॉपिक था, इट वॉज क्वाइट बोल्ड इन 70s के एरा में. बट एनी वेज, मोटिवेशनल मंडे मना रहे हैं आप और हम. जिंदगी में सभी के बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती हैं. इट्स कॉल्ड कि एक रेट्रोग्रेड चल रहा था. सो फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स जो है, काफ़ी लोगों के लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल रही है, और अब कहीं जाके वो शांत हो रहा है रेट्रोग्रेड. तो काफ़ी लोगों के ज़िंदगी में अब काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने लग रहे हैं. 2025 वॉज क्वाइट अ रियलिटी चेक देने वाला साल रहा है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए. 26 अभी जो है ना, अभी मिड हो गया 2026, अब इसके बाद में काफ़ी चीज़ें स्मूथ होने के चांसेस हैं ओवर दैट टाइम. सो जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद यही जीत है. तो हार और जीत दोनों भी, ये जो है ना, ये कहते हैं ना कि तराजू के दोनों पलड़े, व्हाट एम आई सेइंग, आप समझ गए ना यार, मतलब हो गया है, इट्स ओके. कभी कभी योर टंग गेट्स टाइड, पलड़े या शायद वही, या तराजू की दोनों कटोरियाँ समझ लो, जो भी हैं, इट शुड बी इक्वल. तो हार जीत चलती रहेगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, उन सब के साथ में आप कैसे डील करते हैं, ये ओवर द टाइम हमने लाइफ थियोरीज में बात की है. सो मोटिवेशनल मंडे के लिए आज मेरा गीत आप सबके लिए, किशोर कुमार की आवाज़ में, मिस्टर इंडिया से.
1: The sun is out, and so are the summer hits on Leica Gold. ये है Leica Gold. Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Leica Gold.
2: Emotion of the day.

0: इमोशन ऑफ द डे. लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट.
1: एपिसोड नंबर 30 इज दे आर रेडी फॉर यू टू वॉच एंड टू लिसन टू इट. दीप राजा स्पीक्स टू हितेन मेहता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वर्क. लाइक का एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
2: लाइक का एक्स्ट्रा इज हियर. दिस इज अश्विनी ऑन लाइक का गोल्ड. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट travelhubworld.com.
4: श्री राम मंदिर किंग स्ट्रीट साउथ हॉल इनवाइट यू टू द श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व. परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के पावन सानिध्य में 30 अगस्त रविवार को 26वीं शोभा यात्रा सुबह 11:30 से श्री राम मंदिर से आरंभ होगी, जिसमें पूजन, दर्शन, भजन, कीर्तन और प्रीति भोजन. इसके अतिरिक्त 4 सितंबर को शाम 8:00 से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल 22 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल. आप आइए और सबको लाइए.
5: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for 4 people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6:00 खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
8: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स.
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
2: Like a radio network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 130.51 इंडियन रुपी, 378.3 पाकिस्तानी रुपी, 448.3 श्रीलंकन रुपी, 167.35 बांग्लादेशी टाका, 89.07 अफगान अफगानी, 1.36 यूएस डॉलर्स, 176.44 कैनियन शिलिंग, 63.42 मॉरिशियन रुपी.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £110.09 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना है. 8:50 हो चले हैं. 8:50 50 में प्रॉब्लम नहीं, 35 के आगे मेरा प्रॉब्लम है. सो एनीवेज, फैक्ट्स की अगर बात करें तो डॉग्स रिकॉग्नाइज ह्यूमन लाफ्टर एज हैप्पीनेस एंड एक्टिवली लर्न बिहेवियर्स दैट मेक यू लाफ, देन रिपीट देम इंटेंशनली बिकॉज दे नो इट मीन्स प्ले एंड पॉजिटिव थिंग्स हैपन. बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ उस चीज़ से. भाई मेरे घर में मेरी पेट है पीचेस, ब्लैक लैब्राडोर, शी इज़ अ बिग डॉग एंड शी एक्चुअली कॉपीज मी एट टाइम. आई कैन सी इफ आई एम लाफिंग लाउडली, इफ आई एम बर्स्टेड टू लाफ, टी वी पे कुछ देख लिया, घर में कुछ बात हो गई, फ़ोन कॉल पे कुछ हो गया, सो शी गेट्स वेरी एक्साइटेड कि अरे मेरी मम्मी को क्या हो गया, ये इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रही है. एनी वेज, सो शी डज सर्टन एक्टिविटीज वेन आई लाफ्ड एंड शी थॉट ओ दिस मेक्स माई मम हैप्पी, सो शी डज ऑल दोज एक्टिविटीज़ फॉर मी एंड देन माई किड्स लाइक अरे आई इज़ हैप्पी विथ यू, तो वो फिर से कुछ तो रिपीट करिए, बॉल लेके आएगी खेलने के लिए, डज समथिंग. सो पेट पेरेंट्स विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सीरियसली, इफ यू हैव अ पेट इन योर हाउस, आपकी लाइफ बहुत

0: डिफरेंट होती है, बहुत प्यारी होती है, क्योंकि सेल्फलेस लव जो होता है ना वो आप एक्सपीरियंस करते हैं जब आपके पास में एक पेट होता है तो। एंड इस आवर का आखिरी गीत आपको मैं सुना रही हूँ, देखो ना कितना जल्दी समय जा रहा है, फटाफट फटाफट फटाफट, तेरे मेरे सपने से किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा गाना है। आई जस्ट लव दिस ट्रैक यू नो, एंड आई लव दिस रेडियो, अमेजिंग, मजा आता है।
1: London's biggest classics all day. This is Like a Gold. This is Ash Winnie on Like a Gold.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम, और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, atoll protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Anu Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance with the legendary Anup Chalota.
9: Jaam chalne lage, dil machalne lage.
8: On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Hosted by Anisa Nasir. Tayyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
10: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
11: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
12: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
13: Like a Gold, London's number one Asian retro music station.

0: वेलकम, दिस इज द थर्ड एंड द आखिरी आवर ऑफ मोटिवेशनल मंडे। जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका कुल रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। गजलिया कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, आप लोग अपने अपने अंदाज लिख के मुझे भेज रहे हैं। हाँ, बट एक जरूर चीज़ है, बिकॉज दिस इज नो रिक्वेस्ट शो, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट मैं नहीं ले पाऊंगी, बिकॉज प्ले लिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। एंड अभी जो दो गीत आपको सुनाए, बड़े प्यारे से गीत, तो 90s वाले बच्चे वैसे ही खुश हो गए। सातवां आसमान से सुनाए आप सभी को उदित नारायण एंड लता मंगेशकर की आवाज़ में तुम क्या मिले, बड़े दिल वाला। 1983 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म से लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ में कहीं ना जा। आप लोगों से मैं एक्चुअली तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब आपकी और मेरी इंटरेक्शन होती है व्हाट्सएप पे, बड़े मस्ती भरे मैसेजेस होते हैं आप लोगों के साथ में। एंड कई बार द लेडीज हु मैसेज मी एंड व्हेन वी हैविंग अ चैट, सो आई से दैट्स माय गर्ल एंड व्हाट एवर एज दे आर, द वे दे स्माइल बैक एंड दे से ओ वी लाइक दैट व्हेन यू से दैट दैट्स माय गर्ल, सो थैंक यू। हमारा ये जो प्यारा सा रिश्ता, उसमें आप मुझे उतना अधिकार देते हैं कि मैं आपको गर्ल बोलूँ, और उतनी ही खुशी से आप मुझे रिप्लाई भी करते हैं। दैट इज़ वॉट आई लाइक हियर, यू नो, द प्रेजेंटर एंड लिसनर का नाता बड़ा बायस्ड नाता होता है, बड़ा पवित्र नाता लगता है मुझे हम लोगों का, क्योंकि आप और हम म्यूज़िक से जुड़े हैं ना, और देखो ना, म्यूज़िक की वजह से तो हम लोग एक दूसरे को जान पाए, पहचान पाए, राइट? सो ये म्यूज़िक हमारी लाइफ में हमेशा ऐसे ही रहे, और आप और हम हमेशा जुड़े हुए रहेंगे बिकॉज ऑफ म्यूज़िक, फॉर श्योर। सो अगला गीत जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, थोड़ा मस्ती हो जाए इसमें, लता मंगेशकर एंड नितिन मंगेश की आवाज़ में त्रिशूल से सुना रही हूँ आपको अगला गीत, कपूची कपूची। ये गपूची गपूची होता ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो जिनके गाल ऐसे ना, ऐसे गुलाब जामुन के जैसे ऊपर आए, तो हम कहते हैं गुबू गुबू ऐसे, तो उसमें आई डोंट नो, आई जस्ट गो विद दैट, गपूची गपूची एंड गुबू गुबू ऐसे कुछ। तो £1 के बदले आपको मिलेंगे 130 इंडियन रुपी एंड 10 पैसे, एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, विजिट SBIUK.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना है, 9:19 हो चले हैं। लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाज़ में ये हैप्पी हैप्पी सॉन्ग सुना है आपको, है ना, फ्रेश हो गया एकदम से, मज़ा आ गया। ओके, सो अभी नेक्स्ट गीत जो आपको सुना रही हूँ, आर्टिस्ट ऑफ द वीक चित्रगुप्त जी ने कंपोज किया हुआ वासना फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, इतनी नाजुक ना बनो। ये ना मुझे ऐसे टीजिंग होती है ना, इतनी नाजुक ना बनो, वो वाला लगता है मुझे इसमें। तो बिल्कुल सुनते हैं ये वाला गीत, उसके बाद में गजल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली। अभी भी आपके पास टाइम है, बताइए फटाफट।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: From the first time they lose a
3: baby tooth, look mom,
2: to the countless times they forget to mention their
4: ingredients for food tech tomorrow,
2: to the last time you hear that school was
5: yeah, right.
2: Kids grow up fast. Luckily at Tesco we have back to school uniform that grows with them, including everything they need like trousers and skirts with adjustable hems and waists, so you can focus less on the cost and more on all this. Tesco, every little helps. Available in the majority of larger stores and online.
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.
6: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
9: Southall Travel, Atal Protected.
10: पल भर के लिए
0: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज।
11: इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर, फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा।
0: गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर। टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25। बुक टिकट एट heroartcenter.com। बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02037737161।
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक रेडियो नेटवर्क।
12: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक अ रेडियो नेटवर्क।
13: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
14: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स your travel mantra.
15: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
16: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
1: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
9: Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 130.5 इंडियन रुपी, 378.4 पाकिस्तानी रुपी, 448.32 श्रीलंकन रुपी, 167.36 बांग्लादेशी टाका, 89.21 अफगान अफगानी, 1.36 यूएस डॉलर्स, 176.44 कैनियन शिलिंग, 63.48 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £110.09 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 41 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. नया सप्ताह, नया दिन, और जब ये पहला दिन सप्ताह का अंत होता है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं हम सभी, क्योंकि नया सप्ताह हम सभी के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है. एंड नए सप्ताह के साथ में नई उम्मीदें जागती हैं. हमें पता है कि कमिंग वीक में कुछ ना कुछ तो और चीज़ें आने वाली है हमारी लाइफ में. एक तो ये सवाल कई बार मेरे जहन में आता है कि हु मस्ट बी द फर्स्ट पर्सन जिसने ये डेज ऑफ द वीक टाइमिंग्स डिसाइड किए, ऐसा रूटीन होगा और देखो ना हम सभी उसे फॉलो कर रहे हैं. लेकिन नहीं, अभी ओवर द टाइम चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, बट ज़रूरी है कि बैलेंस बनता रहे. सो आखिरी दो गीत मैं सुनाने वाली हूँ आप लोगों को, अलग अलग इस फिल्म से किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में. एंड उसके बाद में दिल ही तो दिल है मन्ना डे की आवाज़ में, लागा चुनरी में दाग. आहा, व्हाट अ फैंटास्टिक ट्रैक दैट वन इज. सो इन दो गीतों के साथ में मैंने कहना है आप सबको टाटा बाय बाय. लेकिन याद रखिएगा गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विस जरूर सुनिएगा. लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2. सुबह सवेरे आएगी हमारी काजल, उनका साथ ज़रूर दीजिएगा. एंड हमेशा की तरह जो आप लोगों को मैं कहती हूँ वही चीज़ दोहराना चाहूँगी. देखिए प्यार बहुत खूबसूरत फीलिंग है ना, और प्यार दो, प्यार लो. ज़रूरी है कि प्यार को महसूस किया जाए. आज हमने लव थियरी के बारे में ही आपने और हमने आज बात की थी कि हर किसी की लव लैंग्वेज कितनी अलग होती है. जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर, ध्यान रखिए आपके आसपास के लोगों की लव लैंग्वेज कैसी है, अप्रिशिएट कीजिए उन चीज़ों को. एज ह्यूमन्स हमें एक दूसरे को अक्नॉलेज करना और अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है ना. जैसे कि आप लोग मेरे शो में हमेशा आप लोग सब मुझे अप्रिशिएट करते रहते हैं कि जैसे मैं शो प्रेजेंट करती हूँ, वैसे अप्रिसिएशन अपने आसपास के लोगों को भी दीजिए. और भी कुछ नए चीज़ों पे कल हम बातें करेंगे. और ज़िंदगी खूबसूरत है भाई, प्लीज़ इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें. बहुत ब्यूटीफुल लाइफ मिली है तो कम्युनिकेट करिए जो भी आप चाहते हैं. एंड पावर का यूज़ तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, आप लोगों में से कोई भी करता नहीं होगा. ऑन दैट नोट आई हैव टू से बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू टुमारो.
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स.
2: दिस सुपर हिट सॉन्ग इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा बासमती राइस. डिस्कवर द सीरियस डिलीशियस पॉसिबिलिटीज विद टिल्डा.

0: हृदय से ये सलूक नहीं करते।
1: आपने मुझ पर आग डाली, मैं आपके गले में डाल दूंगा। डर गए? अच्छा चलो माफ कर दिया।
2: ये है
3: लाइका गोल्ड,
4: अपनों को अपनों के करीब।
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: Ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
6: Banana function रखा हुआ है।
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
8: देखिए, दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
7: डेजर्ट सफारी,
8: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
7: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
8: तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
9: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
10: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box, celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
12: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
13: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
14: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: स्टॉप नाउ सब प्लस अब है स्टॉप प्लस
1: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन।
2: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
3: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: Leica Gold. The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
1: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
2: Dubai is the place. 11,
1: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
3: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड।
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 0208574 8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
1: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
7: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।
8: मेरी